0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं।

अपनी रोटी जलाशय की सतह पर बिखेरो, किसी न किसी दिन उसे फिर पा जाओगे। अपना धन 7 या 8 लोगों में बांट दो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि पृथ्वी पर कौन सी विपत्ति आ पड़ेगी। जब बादल पानी से भर जाते हैं तो वे पृथ्वी पर बरसते हैं। पेड़ चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, वह जहां गिरता है वहीं पड़ा रहता है। जो हवा पर ही ध्यान रखता वह नहीं बोता, जो बादलों की ओर देखता रहता वह नहीं लुनता। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 11वें अध्याय के प्रथम 4 पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इसमें उपदेशक ने कर्तव्य करने पर ध्यान आकर्षित कराया है। यदि व्यक्ति अपने सारे कर्तव्यों का अनुपालन करते हुए जीवन यापन करता है तो वह जीवन का आनंद उठा पाएगा। 11वें अध्याय के पहले पद में उपदेशक धैर्य और दूरदर्शिता के साथ काम करना ही समझदारी बताता है। भले ही तुरंत लाभ न मिले, धैर्य से प्रतीक्षा करने पर वह अवश्य मिल जाएगा। दूसरी ओर कई बाइबल आचार्यों ने इस पद का अर्थ उदारता से अपनी रोटी को साझा करना सुझाया है। उनके अनुसार अपनी रोटी जलाशय की सतह पर बिखेरो से अभिप्राय यही कि अपनी भौतिक चीजें जरूरतमंदों को इस तरह दो कि वह बेकार लगें, जैसे पानी पर रोटी फेंकी जाती हो और तुम उसके लिए पुरस्कृत किए जाओगे। तात्पर्य यही कि अभी कुछ करो ताकि फल भले ही तुरंत न दिखे, वह अवश्य मिलेगा। तदुपरांत उपदेशक कहता है, अपना धन 7 या 8 लोगों में बांट दो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि पृथ्वी पर कौन सी विपत्ति आ पड़ेगी। उपदेशक यहाँ उदारता की सलाह देता है और ऐसा वह इस बात को ध्यान में रखते हुए करता है कि भविष्य भले ही अनिश्चित हो, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। 7 या 8 लोगों में अपना धन बांटने का परामर्श स्पष्ट है और वह यह कि हर मौके का अंदाजा लगाकर इस्तेमाल करें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आगे क्या मुसीबत आ सकती है और ऐसी अचानक आने वाली मुसीबतों के लिए पहले से ही तैयारी कर लेना समझदारी है। फिर उपदेशक बरसते बादल और हवा के झोंकों से गिरते पेड़ों का जिक्र कर कारण और प्रभाव के विचार की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। श्रोताओं, बादल जब पानी से भर जाते हैं तो वे पृथ्वी पर बरसते हैं, और पेड़ चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, वह जहां गिरता है वहीं पड़ा रहता है। अर्थात जिसकी नियति जैसी है वैसी ही होगी, इसलिए प्रकृति के विरुद्ध जाने का कोई लाभ नहीं। यही सिद्धांत हमें अनंत की ओर ले जाता है, क्योंकि इस दुनियावी जिंदगी में इंसान की बुराई या अच्छाई का जवाब प्रायः इस जीवन में नहीं मिलता। उपदेशक कहता है कि हवा पर ध्यान देने वाला बोता नहीं और बादलों की ओर देखते रहने वाला लुनता नहीं। श्रोताओं, ईश्वर ने हमें पृथ्वी पर बोने के लिए अर्थात कुछ करने के लिए प्रेषित किया है। हम हमारे समय का सदुपयोग करें और अपने कामों के उत्तम फल उत्पन्न करें, यही हमसे अपेक्षा की जाती है। यदि हम किसी बहाने अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करते तो सृष्टिकर्ता ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। अस्तु मनुष्य परिस्थितियों को दोष देना बंद करे तथा ईश्वर में अपना विश्वास सुदृढ़ रख कर अपने कर्तव्यों का पालन करता चला जाए।

और अब आइए ग्यारहवें अध्याय के पांचवें और छठे पदों का पाठ करें। ये पद इस प्रकार हैं, जिस तरह तुम नहीं जानते कि प्राण कहाँ जाते और माता के गर्भ में शरीर कैसे बनता है, उसी तरह तुम ईश्वर का कार्य नहीं समझ सकते जिसने सब कुछ को बनाया है। तुम प्रातः अपने खेत में बीज बो और संध्या तक काम करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हें किस काम में सफलता मिलेगी, इसमें या उसमें अथवा दोनों में। जिस तरह तुम नहीं जानते कि प्राण कहाँ जाते शब्दों से उपदेशक सुलेमान हमें फिर से मानवीय ज्ञान की सीमाओं का स्मरण दिलाता है। हम नहीं जानते कि प्राण कहाँ जाते हैं और माता के गर्भ में शरीर कैसे बनता है, इसी तरह पृथ्वी पर ईश्वर के जो कार्य हैं उनके काम करने के कुछ पहलू हैं जिन्हें समझना या बुद्धिगम्य करना मानव की बुद्धि के परे है। श्रोताओ, माता के गर्भ में जीवन का प्रारंभ होता है जो जन्म तक मनुष्य के लिए एक रहस्य ही बना रहता है और यही सत्य का आधार है। संत योहन रचित सुसमाचार के तीसरे अध्याय के आठवें पद में प्रभु येसु मसीह भी इसी तथ्य की पुनरावृत्ति करते हैं। कहते हैं, हवा जिधर चाहती उधर बहती है, आप उसकी आवाज सुनते हैं किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आती है और किधर जाती है। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। श्रोताओ, सृष्टिकर्ता ईश्वर के कार्यों की थाह लेना हम मनुष्यों के लिए असंभव है। हवा के प्रवाह का उदाहरण देकर उपदेशक हमसे और युग युगांतर तक के सब मनुष्यों से ईश्वर के कार्यों के प्रति विनम्र बने रहने का अर्थ निवेदन करता है। आगे ग्यारहवें अध्याय के छठवें पद में वह कहता है, तुम प्रातः अपने खेत में बीज बो और संध्या तक काम करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हें किस काम में सफलता मिलेगी, इसमें या उसमें अथवा दोनों में। श्रोताओ, इस पद में कृषि कार्य की छवि का उपयोग कर उपदेशक हमसे हर तरह के कामों के संपादन हेतु प्रोत्साहन प्रदान करता है। भले ही काम कोई भी हो, वह भले ही सुबह किया जाए या शाम के समय, किसी भी काम से पीछे नहीं हटा जाए। हर काम के लिए मनुष्य तत्पर रहे, मनुष्य किसी भी काम को करने से पीछे नहीं हटे, क्योंकि केवल काम करने के बाद ही वह फल की आशा कर सकता है। यदि वह काम ही नहीं करेगा तो फल की आशा कैसे कर पाएगा। यहां उपदेशक सुलेमान हम सबको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देता है, ताकि हम विश्वासपूर्वक अपने समस्त कामों का संपादन करें, क्योंकि ऐसा कर ही हम जान पाएंगे कि सफलता मिलेगी या नहीं। यदि काम ही नहीं करेंगे तो कैसे पता लगेगा कि वह काम सफल होगा या नहीं, उसका परिणाम अच्छा होगा या नहीं। श्रोताओ, इस प्रकार उपदेशक ग्रंथ का ग्यारहवां अध्याय हमें उदारता का आलिंगन करने के लिए आमंत्रित करता है। वह हमें स्वतंत्रता पूर्वक दान करने और अन्यों में अपनी संपत्ति साझा करने के लिए आमंत्रित करता है। हालांकि हमारी उदारता और हमारी भलाई का पुरस्कार हमें तुरंत नहीं दिखता, किंतु पुरस्कार अवश्य मिलेगा। विशेषकर इस अध्याय का पांचवा पद स्मरण दिलाता है कि मानवीय समझ सीमित है और सृष्टिकर्ता ईश्वर के कार्यों को पूर्णतः बुद्धिगम्य करने में असमर्थ है। और छठवां पद सिखाता है कि प्रज्ञा और समझदारी के साथ अपने सभी कामों का उदारता पूर्वक हम संपादन करें तथा जीवन की अनिश्चितताओं के बावजूद मेहनत करते रहें।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेत्रो परोलिन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम और यूक्रेन के संघर्ष पर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। वैटिकन राज्य सचिव ने 16 सितंबर को इताली संसद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में विश्वास एवं तर्क पर एक सम्मेलन में कहा, हम रुकें और सच में विचार करें कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इसके इस्तेमाल के क्या नतीजे हो सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI, इसकी क्षमता और इसकी मानव एवं आम लोगों की भलाई को होने वाले खतरे सम्मेलन में कार्डिनल के भाषण के मुख्य बिंदु थे। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। इससे खुद बड़े टेक कंपनियों द्वारा AI नियंत्रण की मांग के साथ आयोजित किया गया था। कार्डिनल परोलिन ने कहा, हमें उम्मीद है कि इस तरह के विचार को नैतिक तर्क ही आगे बढ़ाएंगे। कार्डिनल ने इटली के राष्ट्रपति सेर्जो मत्तेरेल्ला की हाल ही में की गई अपील की तारीफ की, जिसमें उन्होंने नई तकनीकी को नियंत्रित करने में राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की जिम्मेदारी की बात कही थी। उन्होंने कहा कि यह एक वैश्विक घटना है जिसमें सभी की भागीदारी जरूरी है। कार्डिनल परोलिन ने कहा, मेरी चिंता इस बात के लिए है कि कुछ देश ऐसे हैं जो इसे अकेले करना चाहते हैं। इसके बजाय कुछ ऐसे आम नियम बनाने में सभी की भागीदारी जरूरी है जो सच में इस परिस्थिति को नियंत्रित कर सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी लोग जवाब खोजने के लिए एक साथ आएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह मानव का भविष्य सचमुच दांव पर है। जब उनसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके हिस्सा लेने और क्या वे इस मौके का इस्तेमाल कृत्रिम बुद्धिमत्ता की देखरेख के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड बनाने की मांग के लिए करेंगे, इस बारे में पूछा गया तो कार्डिनल ने इस विचार को अधिक तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा, शायद हम इस चरण में तुरंत तकनीकी हल ढूंढने वाले नहीं हैं। वैटिकन आमतौर पर सिद्धांत तय करता और उसे सामने रखता है, फिर सहकारिता की समस्या का समाधान उन लोगों के द्वारा राज्यों और संबंधित निकायों के स्तर पर किया जाएगा। AI के व्यक्तिगत इस्तेमाल के बारे पूछे जाने पर कार्डिनल ने कहा, आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता खुद को थोप रही है, क्योंकि जब आप अपना कंप्यूटर खोलते और कुछ पढ़ते हैं तो यह आपको पहले से ही एक सारांश देता है। उन्होंने बतलाया कि वे अपने उपदेश तैयार करने के लिए निश्चय ही AI का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पूरी तरह से सिर है, हृदय नहीं। मैं अपने प्रवचनों में थोड़ा दिल लगाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद वैटिकन राज्य सचिव ने यूक्रेन की स्थिति और एक ऐसे संघर्ष में वैटिकन की कूटनीति की भूमिका के बारे में सवालों के जवाब दिए, जो लगातार गंभीर होता जा रहा है और यूरोपीय संघ की सीमाओं के करीब बढ़ता जा रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि परिणाम सीमित है, लेकिन उन्होंने कहा, हम मानवीय कूटनीति के अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। सन 1567 में संत स्तानिस्लास कोस्टका ने वियना छोड़ा और जर्मनी पार करके रोम पहुंच गए थे, इस उम्मीद से कि वे अपने पिता की इच्छा के विपरीत येसु संघ में प्रवेश कर पाएंगे। इस साल युवा पोलिश तीर्थयात्रियों ने बुलाहट के लिए प्रार्थना करने हेतु उसी 1713 किलोमीटर के रास्ते को फिर से तय किया। रोम में संत अंद्रिया अल्क्वेर नाले के गिरजाघर में संत स्तानिस्लास की कब्र पर उन्होंने कार्डिनल जॉन फ्रांको गिरलांदा की अध्यक्षता में एक ख्रिस्त्याग के साथ तीर्थयात्रा के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। यह तीर्थयात्रा संत स्तानिस्लास के संत बनने की 300वीं सालगिरह के मौके पर हुई और इसे 160 लोगों के साथ एक रिले के तौर पर किया गया। पहला चरण वियना के लिंच तक 3 जुलाई को शुरू हुआ था। धर्माध्यक्ष शिमोन स्टूलकोवास्की ने कहा, हम दुनिया और यूरोप को संत स्तानिस्लास की याद दिलाना चाहते थे जिन्होंने इस तीर्थयात्रा को शुरू किया था, जो ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली से होकर गुजरे थे। 15 सितंबर को रोम में संत अंद्रिया अल्क्वेर नाले गिरजाघर में संत स्तानिस्लास की कब्र पर तीर्थयात्रियों ने अपनी यात्रा के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। अपने प्रवचन में कार्डिनल जॉन फ्रांको ने युवा संत के जीवन के नाट्य दौर को याद किया। वियना में कॉलेजियम नोबेलियम में पढ़ाई के दौरान स्तानिस्लास को येसु संघ में अपनी रुचि का पता चला। अपने परिवार के विरोध की आशंका के चलते वे वियना से भाग गए। पहले जर्मनी गए, जहां उन्हें संत पीटर कनेसियस से मदद मिली, और फिर रोम चले गए, जहां उन्हें नौशिष्यालय में शामिल किया गया। कई मुश्किलों का सामना करने के बावजूद स्तानिस्लास ने कमाल का पक्का इरादा दिखाया।
कार्डिनल ने कहा कि यह ताकत कुछ हद तक उनके चरित्र और पक्के इरादे से और कुछ हद तक एक अलौकिक स्रोत से आई थी। वियना में रहते हुए स्टानिस्लास को एक गंभीर बीमारी हुई। उस दौरान उन्हें सपने में कुंवारी मरियम और बालक येसु दिखाई दिए। माता मरियम ने उन्हें बच्चे को उनकी बाहों में लेने दिया और उन्हें समझाया कि उनकी मृत्यु का समय अभी नहीं आया है और उन्हें येसु संघ में शामिल होना है। 2 साल बाद जब वे रोम में एक जेसुइट नौशिष्य थे, अपनी मृत्यु के समय फिर एक बार माता मरियम से मुलाकात की। संत स्टानिस्लास की मृत्यु 18 साल की उम्र में हुई। वे नौशिष्यों एवं युवा येसु संघियों के संरक्षक संत हैं। कार्डिनल किरलांदा ने कहा कि संत स्टानिस्लास कोस्टका, जो एक अमीर और प्रभावशाली परिवार से थे, दुनियावी चीजों की घमंड को पूरी तरह समझते थे कि वे धुंध की तरह गायब हो जाती हैं, जबकि जो हमेशा रहता है वह ईश्वर की इच्छा है। कार्डिनल ने कहा, जिस सांसारिक समाज में हम रहते हैं वह हम सभी के लिए लगातार प्रलोभन का कारण है। यह कई तरह से अपने घमंड से अपनी ओर खींचता है और शैतान हमें ऐसी चीज के रूप में पेश करके धोखा देता है कि वह हमें खुशी दे सकती है। संत स्टानिस्लास हमें सिखाते हैं कि हमें इसका विरोध करना चाहिए और ईश्वर के प्रति वफादार रहना चाहिए, भले ही इससे हमारे आसपास के लोगों में गलत फहमी पैदा हो। 6 से 8 नवंबर को पोप लियो 14वें की उरुग्वे की प्रेरित यात्रा से पहले देश के धर्माध्यक्ष रोम में अपनी अदलीमिना प्रेरित यात्रा कर रहे हैं। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हम ख्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार और घोषणा कैसे कर सकते हैं? फ्लोरिडा के धर्माध्यक्ष अल्फोंसो बाउर ने उरुग्वे के धर्माध्यक्षों की एक मुख्य चिंता को इस तरह बताया जो वे अपने अदलीमिना प्रेरित यात्रा के दौरान रोम लाए हैं। लैटिन अमेरिकी देश में कलीसिया सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने, लोगों का साथ देने और उम्मीद जगाने के नए तरीके ढूंढ रही है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं।

अपनी रोटी जलाशय की सतह पर बिखेरो, किसी न किसी दिन उसे फिर पा जाओगे। अपना धन 7 या 8 लोगों में बांट दो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि पृथ्वी पर कौन सी विपत्ति आ पड़ेगी। जब बादल पानी से भर जाते हैं तो वे पृथ्वी पर बरसते हैं। पेड़ चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, वह जहां गिरता है वहीं पड़ा रहता है। जो हवा पर ही ध्यान रखता वह नहीं बोता, जो बादलों की ओर देखता रहता वह नहीं लुनता। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 11वें अध्याय के प्रथम 4 पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इसमें उपदेशक ने कर्तव्य करने पर ध्यान आकर्षित कराया है। यदि व्यक्ति अपने सारे कर्तव्यों का अनुपालन करते हुए जीवन यापन करता है तो वह जीवन का आनंद उठा पाएगा। 11वें अध्याय के पहले पद में उपदेशक धैर्य और दूरदर्शिता के साथ काम करना ही समझदारी बताता है। भले ही तुरंत लाभ न मिले, धैर्य से प्रतीक्षा करने पर वह अवश्य मिल जाएगा। दूसरी ओर कई बाइबल आचार्यों ने इस पद का अर्थ उदारता से अपनी रोटी को साझा करना सुझाया है। उनके अनुसार अपनी रोटी जलाशय की सतह पर बिखेरो से अभिप्राय यही कि

उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। 7 या 8 लोगों में अपना धन बांटने का परामर्श स्पष्ट है, और वह यह कि हर मौके का अंदाजा लगाकर इस्तेमाल करें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आगे क्या मुसीबत आ सकती है, और ऐसी अचानक आने वाली मुसीबतों के लिए पहले से ही तैयारी कर लेना समझदारी है। फिर उपदेशक बरसते बादल और हवा के झोंकों से गिरते पेड़ों का जिक्र कर कारण और प्रभाव के विचार की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। श्रोताओं, बादल जब पानी से भर जाते हैं तो वे पृथ्वी पर बरसते हैं, और पेड़ चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, वह जहां गिरता है वहीं पड़ा रहता है। अर्थात जिसकी नियति जैसी है वैसी ही होगी, इसलिए प्रकृति के विरुद्ध जाने का कोई लाभ नहीं। यही सिद्धांत हमें अनंत की ओर ले जाता है, क्योंकि इस दुनियावी जिंदगी में इंसान की बुराई या अच्छाई का जवाब प्रायः इस जीवन में नहीं मिलता। उपदेशक कहता है कि हवा पर ध्यान देने वाला बोता नहीं और बादलों की ओर देखते रहने वाला लुनता नहीं। श्रोताओं, ईश्वर ने हमें पृथ्वी पर बोने के लिए अर्थात कुछ करने के लिए प्रेषित किया है। हम हमारे समय का सदुपयोग करें और अपने कामों के उत्तम फल उत्पन्न करें, यही हमसे अपेक्षा की जाती है। यदि हम किसी बहाने अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करते तो सृष्टिकर्ता ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। अस्तु मनुष्य परिस्थितियों को दोष देना बंद करे तथा ईश्वर में अपना विश्वास सुदृढ़ रख कर अपने कर्तव्यों का पालन करता चला जाए।

और अब आइए 11वें अध्याय के 5वें और 6ठे पदों का पाठ करें। ये पद इस प्रकार हैं, जिस तरह तुम नहीं जानते कि प्राण कहाँ जाते और माता के गर्भ में शरीर कैसे बनता है, उसी तरह तुम ईश्वर का कार्य नहीं समझ सकते जिसने सब कुछ को बनाया है। तुम प्रातः अपने खेत में बीज बो और संध्या तक काम करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हें किस काम में सफलता मिलेगी, इसमें या उसमें अथवा दोनों में। जिस तरह तुम नहीं जानते कि प्राण कहाँ जाते शब्दों से उपदेशक सुलेमान हमें फिर से मानवीय ज्ञान की सीमाओं का स्मरण दिलाता है। हम नहीं जानते कि प्राण कहाँ जाते हैं और माता के गर्भ में शरीर कैसे बनता है। इसी तरह पृथ्वी पर ईश्वर के जो कार्य हैं, उनके काम करने के कुछ पहलू हैं जिन्हें समझना या बुद्धिगम्य करना मानव की बुद्धि के परे है। श्रोताओ, माता के गर्भ में जीवन का प्रारंभ होता है, जो जन्म तक मनुष्य के लिए एक रहस्य ही बना रहता है, और यही सत्य का आधार है। संत योहन रचित सुसमाचार के 3रे अध्याय के 8वें पद में प्रभु यीशु मसीह भी इसी तथ्य की पुनरावृत्ति करते हैं। कहते हैं, हवा जिधर चाहती उधर बहती है। आप उसकी आवाज सुनते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आती है और किधर जाती है। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। श्रोताओ, सृष्टिकर्ता ईश्वर के कार्यों की थाह लेना हम मनुष्यों के लिए असंभव है। हवा के प्रवाह का उदाहरण देकर उपदेशक हमसे और युग युगांतर तक के सब मनुष्यों से ईश्वर के कार्यों के प्रति विनम्र बने रहने का अर्थ निवेदन करता है। आगे 11वें अध्याय के 6वें पद में वह कहता है, तुम प्रातः अपने खेत में बीज बो और संध्या तक काम करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हें किस काम में सफलता मिलेगी, इसमें या उसमें अथवा दोनों में। श्रोताओ, इस

पद में कृषि कार्य की छवि का उपयोग कर उपदेशक हमसे हर तरह के कामों के संपादन हेतु प्रोत्साहन प्रदान करता है। भले ही काम कोई भी हो, वह भले ही सुबह किया जाए या शाम के समय, किसी भी काम से पीछे नहीं हटा जाए। हर काम के लिए मनुष्य तत्पर रहे, मनुष्य किसी भी काम को करने से पीछे नहीं हटे, क्योंकि केवल काम करने के बाद ही वह फल की आशा कर सकता है। यदि वह काम ही नहीं करेगा तो फल की आशा कैसे कर पाएगा। यहाँ उपदेशक सुलेमान हम सबको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देता है, ताकि हम विश्वासपूर्वक अपने समस्त कामों का संपादन करें, क्योंकि ऐसा कर ही हम जान पाएंगे कि सफलता मिलेगी या नहीं। यदि काम ही नहीं करेंगे तो कैसे पता लगेगा कि वह काम सफल होगा या नहीं, उसका परिणाम अच्छा होगा या नहीं। श्रोताओं, इस प्रकार उपदेशक ग्रंथ का 11वां अध्याय हमें उदारता का आलिंगन करने के लिए आमंत्रित करता है। वह हमें स्वतंत्रता पूर्वक दान करने और अन्यों में अपनी संपत्ति साझा करने के लिए आमंत्रित करता है। हालांकि हमारी उदारता और हमारी भलाई का पुरस्कार हमें तुरंत नहीं दिखता, किंतु पुरस्कार अवश्य मिलेगा। विशेषकर इस अध्याय का 5वां पद स्मरण दिलाता है कि मानवीय समझ सीमित है और सृष्टिकर्ता ईश्वर के कार्यों को पूर्णतः बुद्धिगम्य करने में असमर्थ है। और 6वां पद सिखाता है कि प्रज्ञा और समझदारी के साथ अपने सभी कामों का उदारता पूर्वक हम संपादन करें तथा जीवन की अनिश्चितताओं के बावजूद मेहनत करते रहें।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेत्रो परोली ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम और यूक्रेन के संघर्ष पर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। वैटिकन राज्य सचिव ने 16 सितंबर को इताली संसद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में विश्वास एवं तर्क पर एक सम्मेलन में कहा, हम रुकें और सच में विचार करें कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इसके इस्तेमाल के क्या नतीजे हो सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI, इसकी क्षमता और इसके मानव एवं आम लोगों की भलाई को होने वाले खतरे सम्मेलन में कार्डिनल के भाषण के मुख्य बिंदु थे। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। इससे खुद बड़े टेक कंपनियों द्वारा AI नियंत्रण की मांग के साथ आयोजित किया गया था। कार्डिनल परोली ने कहा, हमें उम्मीद है कि इस तरह के विचार को नैतिक तर्क ही आगे बढ़ाएंगे। कार्डिनल ने इटली के राष्ट्रपति सेर्जो मत्तेरेल्ला की हाल ही में की गई अपील की तारीफ की, जिसमें उन्होंने नई तकनीकी को नियंत्रित करने में राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की जिम्मेदारी की बात कही थी। उन्होंने कहा कि यह एक वैश्विक घटना है जिसमें सभी की भागीदारी जरूरी है। कार्डिनल परोली ने कहा, मेरी चिंता इस बात के लिए है कि कुछ देश ऐसे हैं जो इसे अकेले करना चाहते हैं, इसके बजाय कुछ ऐसे आम नियम बनाने में सभी की भागीदारी जरूरी है जो सच में इस परिस्थिति को नियंत्रित कर सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी लोग जवाब खोजने के लिए एक साथ आएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह मानव का भविष्य सचमुच दांव पर है। जब उनसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके हिस्सा लेने और क्या वे इस मौके का इस्तेमाल कृत्रिम बुद्धिमत्ता की देखरेख के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड बनाने की मांग के लिए करेंगे, इस बारे में पूछा गया तो कार्डिनल ने इस विचार को अधिक तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा, शायद हम इस चरण में तुरंत तकनीकी हल ढूंढने वाले नहीं हैं। वैटिकन आमतौर पर सिद्धांत तय करता और उसे सामने रखता है, फिर सहकारिता की समस्या का समाधान उन लोगों के द्वारा राज्यों और संबंधित निकायों के स्तर पर किया जाएगा। AI के व्यक्तिगत इस्तेमाल के बारे पूछे जाने पर कार्डिनल ने कहा, आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता खुद को थोप रही है, क्योंकि जब आप अपना कंप्यूटर खोलते और कुछ पढ़ते हैं तो यह आपको पहले से ही एक सारांश देता है। उन्होंने बतलाया कि वे अपने उपदेश तैयार करने के लिए निश्चय ही AI का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पूरी तरह से सिर है, हृदय नहीं। मैं अपने प्रवचनों में थोड़ा दिल लगाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद वैटिकन राज्य सचिव ने यूक्रेन की स्थिति और एक ऐसे संघर्ष में वैटिकन की कूटनीति की भूमिका के बारे में सवालों के जवाब दिए, जो लगातार गंभीर होता जा रहा है और यूरोपीय संघ की सीमाओं के करीब बढ़ता जा रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि परिणाम सीमित है, लेकिन उन्होंने कहा, हम मानवीय कूटनीति के अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। सन 1567 में संत स्तानिस्लास कोस्तका ने वियना छोड़ा और जर्मनी पार करके रोम पहुंच गए थे, इस उम्मीद से कि वे अपने पिता की इच्छा के विपरीत येसु संघ में प्रवेश कर पाएंगे। इस साल युवा पोलिश तीर्थयात्रियों ने बुलाहट के लिए प्रार्थना करने हेतु उसी 1713 किलोमीटर के रास्ते को फिर से तय किया। रोम में संत अंद्रिया अल्क्वेर नाले के गिरजाघर में संत स्तानिस्लास की कब्र पर उन्होंने कार्डिनल जॉन फ्रांको गिरलांदा की अध्यक्षता में एक ख्रिस्त्याग के साथ तीर्थयात्रा के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। यह तीर्थयात्रा संत स्तानिस्लास के संत बनने की 300वीं सालगिरह के मौके पर हुए और इसे 160 लोगों के साथ एक रिले के तौर पर किया गया। पहला चरण वियना के लिंच तक 3 जुलाई को शुरू हुआ था। धर्माध्यक्ष शिमोन स्टूलकोवास्की ने कहा, हम दुनिया और यूरोप को संत स्तानिस्लास की याद दिलाना चाहते थे जिन्होंने इस तीर्थ यात्रा को शुरू किया था, जो ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली से होकर गुजरे थे। 15 सितंबर को रोम में संत अंद्रिया अल्क्वेर नाले गिरजाघर में संत स्तानिस्लास की कब्र पर तीर्थयात्रियों ने अपनी यात्रा के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। अपने प्रवचन में कार्डिनल जॉन फ्रांको ने युवा संत के जीवन के नाटकीय दौर को याद किया। वियना में कॉलेजियम नोबेलियम में पढ़ाई के दौरान स्तानिस्लास को येसु संघ में अपनी रुचि का पता चला। अपने परिवार के विरोध की आशंका के चलते वे वियना से भाग गए। पहले जर्मनी गए जहां उन्हें संत पीटर कनेसियस से मदद मिली और फिर रोम चले गए जहां उन्हें नौशिष्यालय में शामिल किया गया। कई मुश्किलों का सामना करने के बावजूद स्तानिस्लास ने कमाल का पक्का इरादा दिखाया।
कार्डिनल ने कहा कि यह ताकत कुछ हद तक उनके चरित्र और पक्के इरादे से और कुछ हद तक एक अलौकिक स्रोत से आई थी। वियना में रहते हुए स्टानिस्लास को एक गंभीर बीमारी हुई। उस दौरान उन्हें सपने में कुंवारी मरियम और बालक येसु दिखाई दिए। माता मरियम ने उन्हें बच्चे को उनकी बाहों में लेने दिया और उन्हें समझाया कि उनकी मृत्यु का समय अभी नहीं आया है और उन्हें येसु संघ में शामिल होना है। 2 साल बाद जब वे रोम में एक जेसुइट नौशिष्य थे, अपनी मृत्यु के समय फिर एक बार माता मरियम से मुलाकात की। संत स्टानिस्लास की मृत्यु 18 साल की उम्र में हुई। वे नौशिष्यों एवं युवा येसु संघियों के संरक्षक संत हैं। कार्डिनल गिरलांदा ने कहा कि संत स्टानिस्लास कोस्टका, जो एक अमीर और प्रभावशाली परिवार से थे, दुनियावी चीजों की घमंड को पूरी तरह समझते थे कि वे धुंध की तरह गायब हो जाती हैं, जबकि जो हमेशा रहता है वह ईश्वर की इच्छा है। कार्डिनल ने कहा, जिस सांसारिक समाज में हम रहते हैं वह हम सभी के लिए लगातार प्रलोभन का कारण है। यह कई तरह से अपने घमंड से अपनी ओर खींचता है और शैतान हमें ऐसी चीज के रूप में पेश करके धोखा देता है कि वह हमें खुशी दे सकती है। संत स्टानिस्लास हमें सिखाते हैं कि हमें इसका विरोध करना चाहिए और ईश्वर के प्रति वफादार रहना चाहिए, भले ही इससे हमारे आसपास के लोगों में गलत फहमी पैदा हो। 6 से 8 नवंबर को पोप लियो 14वें की उरुग्वे की प्रेरित यात्रा से पहले देश के धर्माध्यक्ष रोम में अपनी अदलीमिना प्रेरित यात्रा कर रहे हैं। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हम ख्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार और घोषणा कैसे कर सकते हैं? फ्लोरिडा के धर्माध्यक्ष अल्फोंसो बाउर ने उरुग्वे के धर्माध्यक्षों की एक मुख्य चिंता को इस तरह बताया जो वे अपने अदलीमिना प्रेरित यात्रा के दौरान रोम लाए हैं। लैटिन अमेरिकी देश में कलीसिया सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने, लोगों का साथ देने और उम्मीद जगाने के नए तरीके ढूंढ रही है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त

0: मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु येसु की प्राण पीड़ा।
1: मतलब हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं,
1: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का तीसरा भेद, प्रभु यीशु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है।
0: मतलब हम दुख में ना कुरकुराएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु यीशु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं,
0: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु यीशु को क्रूस पर ठोका जाता है,
0: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नवियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर, कृपा

हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और पुत्र

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और फादर संजय दिलीप एक्का। श्रोताओं, 12 और 13 सितंबर को भारत की मेजबानी में भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित इस वर्ष के 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कई देशों के शीर्ष नेताओं के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख भी शामिल हुए और इसका आयोजन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण की थीम के तहत किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया तेजी से बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है और वैश्विक संस्थाओं को भी बदलती वास्तविकताओं के अनुरूप ढलना होगा। ब्रिक्स समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ अब कई अन्य देश भी शामिल हैं। इसकी स्थापना प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को उस वैश्विक व्यवस्था में अधिक मजबूत आवाज देने के उद्देश्य से हुई थी जिस पर लंबे समय से पश्चिमी देशों का प्रभाव रहा है। ब्रिक्स नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र भी अपनाया जिसमें बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने, वैश्विक संस्थाओं में सुधार और विकासशील देशों की भूमिका व प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर जोर दिया गया। घोषणा पत्र में AI, जलवायु सहन सह क्षमता और विकास सहयोग को आगे बढ़ाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का भी समर्थन किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र मंगलवार 8 सितंबर को न्यूयॉर्क के UN मुख्यालय में शुरू हुआ। महासभा के निवर्तमान अध्यक्ष एनालेना बेरबाक ने समापन भाषण दिया। इसके बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने बेरबाक से अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला और 81वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। यह अध्यक्षता एक वर्ष के कार्यकाल के लिए होती है। नए महासभा अध्यक्ष खलीलुर रहमान ने युद्धों, मानवीय संकटों और गहराते जलवायु संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र के प्रति वैश्विक भरोसा फिर से कायम करने का यह दृढ़ संकल्प जताया। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में सभी 193 सदस्य देश शामिल हैं। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख विचार विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधित्व करने वाला निकाय है। यह वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करता है तथा प्रस्तावों को अपनाता है। हालांकि महासभा के अधिकांश प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र मंगलवार को न्यूयॉर्क स्थित UN मुख्यालय में शुरू हुआ। नए महासभा अध्यक्ष बांग्लादेश के खलीलुर रहमान ने अपने कार्यकाल की प्राथमिकताएं पेश करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रति वैश्विक भरोसा फिर से बहाल करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि दुनिया बदल चुकी है और संयुक्त राष्ट्र को भी भविष्य के लिए तैयार होना होगा। इस वर्ष महासभा की थीम है भरोसा बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन, ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सर्वजन के लिए काम करे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि नया सत्र ऐसे समय शुरू हो रहा है जब दुनिया युद्धों, भू राजनैतिक तनाव, असमानता और गहराते जलवायु संकट से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि बहुपक्षीय व्यवस्था में भरोसा फिर से कायम करना हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है।
2: यूएन महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय परिसर में जापानी शांति घंटी बजाने के वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए दुनिया भर में बढ़ती हिंसा, विभाजन और हिंसक टकरावों के बीच विश्व नेताओं से शांति में निवेश बढ़ाने की अपील की। यूएन जापान संघ ने 8 जून 1954 को जापानी शांति घंटी संयुक्त राष्ट्र को भेंट की थी। यह घंटी 60 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा दान किए गए सिक्कों और विभिन्न प्रकार के धातुओं से तैयार की गई थी। इसे पारंपरिक शिंटो मंदिर जैसी लकड़ी की संरचना में लटका कर रखा गया है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दुनिया भर में बढ़ती हिंसा, विभाजन और हिंसक टकरावों के बीच विश्व नेताओं से शांति में निवेश बढ़ाने की अपील की है। न्यूयॉर्क स्थित यूएन मुख्यालय में जापानी शांति की घंटी बजाने के वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शांति अपने आप हासिल नहीं होती, इसके लिए लगातार मेहनत और ठोस कार्रवाई जरूरी है। महासचिव ने कहा कि हिंसा और विभाजन समुदायों को तोड़ रहे हैं, हिंसक टकराव फैला रहे हैं और लोग पीड़ा झेल रहे हैं, मगर समाधान के लिए जरूरी संवाद और एकजुटता कमजोर पड़ रही है। ये अपील 21 सितंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस से पहले आई है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम है शांति में निवेश, सर्वजन के लिए, हर जगह हर दिन। यूएन प्रमुख ने विश्व नेताओं से स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सामाजिक सुरक्षा, मानवाधिकार, संवाद और कूटनीति में निवेश बढ़ाने की अपील की।
2: 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए जघन्य आतंकवादी हमलों में हजारों लोगों की जान चली गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने कहा कि 25 वर्ष पहले हुए ये हमले किसी एक देश पर नहीं बल्कि पूरी मानवता पर हमला था। हमलों की 25वीं बरसी पर उन्होंने हमलों के पीड़ितों, जीवित बचे लोगों और न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में सबसे पहले मदद के लिए पहुंचे राहत कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अनेक देशों ने सुरक्षा उपायों को मजबूत किया और आतंकवाद से निपटने के प्रयास तेज किए। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकवादी हमलों की 25वीं बरसी पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने लगभग 3,000 पीड़ितों को याद किया जो अमेरिका और 90 से अधिक देशों से थे। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और उन सभी लोगों के साथ खड़ा है जिनका जीवन इन हमलों से प्रभावित हुआ। संयुक्त राष्ट्र के उपप्रवक्ता फरहान हक ने महासचिव का संदेश दोहराते हुए कहा,
4: As we pay tribute to the victims,
3: पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए आइए आतंकवाद से मुक्त भविष्य के निर्माण के लिए हम अपने साझा संकल्प को फिर से दोहराएं। संयुक्त राष्ट्र के उपप्रवक्ता फरहान हक के शब्द। महासचिव ने कहा कि 2026 में

का सबसे अधिक असर महिलाओं पर पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने कहा, आज अफगानिस्तान में बहुत से लोगों के हालात बद से बदतर होती जा रही है। उन्होंने शिक्षा, रोजगार, आवाजाही की स्वतंत्रता और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी पर लगे कड़े प्रतिबंधों की निंदा की। आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंशु शर्मा। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

0: आप वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापालियो चौदहवें ने शुक्रवार को अगुस्टिनियन धर्म समाज द्वारा संचालित संत पापालियो चौदहवें अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र के विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए उन्हें प्रेम की सभ्यता का निर्माता होने का संदेश दिया। संत पापा ने विद्यार्थियों को अपने संबोधन में कहा, मैंने शुरू से ही विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी निकायों, सामाजिक संगठनों, कलिस्से से जुड़े समुदायों और नेटवर्क के साथ व्यापक वार्ता के लिए अध्ययन केंद्र की प्रतिबद्धता की सराहना की है, जिसके द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सहयोगपूर्ण संबंध और आदान प्रदान को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा,
1: Segreto è nel camminare insieme, sempre.
0: कि यह राज इस बात में निहित है कि हम हमेशा साथ मिलकर चलें और उन लोगों से अपने विचारों को साझा करने हेतु अपने द्वार बंद कभी ना करें जो हमसे अलग हैं। संत पापा ने अध्ययन केंद्र के सदस्यों को सच्चे मानवतावाद के मूल्यों से प्रेरणा लेने को प्रोत्साहित किया। ये मूल्य सृष्टिकर्ता के प्रति हमारे खुलेपन में, दूसरों के संग भ्रातृत्व में संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। उन्होंने कहा, हम युद्ध के द्वारा नहीं बल्कि शांति और न्यायपूर्ण संतुलन के ताने बाने से सभ्यता का निर्माण करते हैं। हमारे समय की चुनौतियों का सामना हम ख्रिस्तीय नहीं करते तो वर्तमान सामाजिक, श्रम, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भों में ख्रिस्तीयता के प्रकटीकरण की नई व्याख्या की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उन्होंने जोर दिया कि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें चाहिए कि हम आम विद्यार्थियों और धर्म सिद्धांत और विशेषज्ञों के अलावे लोगों तथा संस्थान से निरंतर वार्ता करें। संस्थान के लक्ष्य को आशा की एक प्रेरिताई निरूपित करते हुए उन्होंने कहा, हमें सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन हेतु एक ऐसी तैयारी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है जो आम भलाई, समुदाय के प्रति जिम्मेदार

दारी एकजुटता, न्याय और शांति पर आधारित रिश्ते को स्थापित करने हेतु सेवा के कार्य में समर्पित हो। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि अगुस्टिनियन संस्थान मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, जिसके फलस्वरूप प्रेम व्यक्तिगत, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में नवीनता लाने का एक मूल सिद्धांत बन सकता है। उन्होंने संस्थान के विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए कहा, ईश्वर की नई चीजों में दक्षता हासिल करें, उनमें तेजी और निपुणता हासिल करते हुए सबको चकित करें, लेकिन उन सभी चीजों में भी जिसे वे गुप्त रूप में हमारे लिए लाते हैं। रोम के विकर जनरल ने वैटिकन समाचार से वार्ता करते हुए अनंत शहर के कलिस्से के संबंध में कहा कि रोम में भूखों मरना कठिन है, लेकिन लोग निश्चित ही अकेलेपन से मरते हैं। 19 सितंबर 2025 की आधिकारिक प्रेरितिक बैठक की भांति संत पापलियो 14वें के 18 सितंबर 2026 को संत जॉन लातेरान के महागिरजाघर में रोम धर्म प्रांत की आम बैठक के पूर्व वैटिकन समाचार से वार्ता करते हुए रोम के विकर कार्डिनल बाल्दो रेइना ने कहा, हम धर्माध्यक्ष और उनके धर्म प्रांतों के बीच संबंध को मजबूत कर रहे हैं। इस प्रेरितिक बैठक की शुरुआत, जिसमें धर्म प्रांत के 334 पल्लियों के प्रतिभागी शामिल होंगे, एक प्रार्थना से शुरू होगी, जिसकी अगुवाई कार्डिनल रेइना करेंगे। इसके उपरांत 3 साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे और तदुपरांत संत पापा लियो का संबोधन होगा। कार्डिनल ने रोम के पल्लियों की मुख्य चुनौतियों के बारे में वैटिकन समाचार से कहा, हमारे सामने टूटते परिवारों की बड़ी चुनौती है, जहां हम परिवारों में आपसी संबंधों में बिखराव, बच्चों की परवरिश में चुनौतियों के अलावे संस्था के रूप में परिवार के हर पहलू को कमजोर पाते हैं। इससे जुड़ी एक अन्य समस्या नशा पान है, जो युवाओं को अपना शिकार बना रही है। उन्होंने कहा, घर की कमी और उससे जुड़ी गरीबी तेजी से गंभीर होती जा रही है। बाजार की ताकतों की वजह से घर की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि यह औसत वेतनधारियों की पहुंच से बाहर हो गया है। कार्डिनल ने कहा, हम मसीह को अपने जीवन के केंद्र बिंदु में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि संत पापा ने हमें विगत साल अपने संबोधन में आह्वान किया था। अतः हम 2033 में होने वाले मुक्ति की जयंती की ओर अपनी निगाहें गड़ाते हैं। उधर परम धर्म पीठ के स्थायी प्रवर्तक स्वरूप न्यूयॉर्क में महाधर्माध्यक्ष क्रिस्टोफ जेड एल कामिस ने अपने प्रथम वक्तव्य में नफरत फैलाने वाली बातों को खत्म करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह सार्वजनिक वार्ता में विष घोलती है, लोगों के बीच विभाजन को बढ़ावा देती और बहुधा हिंसा और उत्पीड़न के लिए एक माहौल तैयार करती है। 17 सितंबर को महाधर्माध्यक्ष एल कामिस ने न्यूयॉर्क में अंतर धार्मिक और अंतर सांस्कृतिक संवाद और सहिष्णुता को बढ़ावा देने पर आयोजित वैश्विक सम्मेलन में अपना पहला वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा, शांति स्थापित करने के लिए सिर्फ शब्द काफी नहीं है। सच्ची सहनशीलता का मतलब उदासीनता या सापेक्षवाद नहीं है, इसका मतलब है हर व्यक्ति की गरिमा और उसके अंतःकरण की स्वतंत्रता को सही रूप में स्वीकार करना। सच्ची सहनशीलता हेतु बातचीत और आपसी समझ स्थापित करने हेतु हमें रूढ़िवादी सोच को त्यागते हुए धैर्य में बने रहने की आवश्यकता है। संत पापलियो के संदेशों को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा, हमें वार्ता को हर तरह से पूर्वग्रह, नाराजगी, कट्टरता और यहाँ तक कि नफरत से मुक्त करना चाहिए। उन्होंने कहा, आइए हम शब्दों को हिंसा मुक्त करें। उधर बच्चों के लिए मद उपलब्ध कराने वाली यूएन के यूनिसेफ ने यमन में युद्ध की स्थिति को लेकर इस बात की चिंता जताई है कि युद्ध की उग्रता के कारण वहां के बच्चों को बहुत कष्ट झेलना पड़ रहा है। एजेंसी के रिपोर्टों के अनुसार 2 सप्ताहों के अंतराल में 1,04,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा है, जिसमें बच्चों की संख्या 57,000 है। यूनिसेफ ने युद्ध में शामिल सभी दलों से अपील की है कि वे आम लोगों, खासकर बच्चों की रक्षा करें, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान करें और जरूरतमंदों के लिए सुरक्षित और बिना रुकावट मानवीय सहायता पहुंचाने में मदद करें। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और फादर संजय दिलीप एक्का। श्रोताओं, 12 और 13 सितंबर को भारत की मेजबानी में भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित इस वर्ष के 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कई देशों के शीर्ष नेताओं के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख भी शामिल हुए और इसका आयोजन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण की थीम के तहत किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया तेजी से बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है और वैश्विक संस्थाओं को भी बदलती वास्तविकताओं के अनुरूप ढलना होगा। ब्रिक्स समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ अब कई अन्य देश भी शामिल हैं। इसकी स्थापना प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को उस वैश्विक व्यवस्था में अधिक मजबूत आवाज देने के उद्देश्य से हुई थी जिस पर लंबे समय से पश्चिमी देशों का प्रभाव रहा है। ब्रिक्स नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र भी अपनाया जिसमें बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने, वैश्विक संस्थाओं में सुधार और विकासशील देशों की भूमिका व प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर जोर दिया गया। घोषणा पत्र में AI, जलवायु सहन सह क्षमता और विकास सहयोग को आगे बढ़ाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का भी समर्थन किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र मंगलवार 8 सितंबर को न्यूयॉर्क के UN मुख्यालय में शुरू हुआ। महासभा के निवर्तमान अध्यक्ष एनालेना बेरबाक ने समापन भाषण दिया। इसके बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने बेरबाक से अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला और 81वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। यह अध्यक्षता एक वर्ष के कार्यकाल के लिए होती है। नए महासभा अध्यक्ष खलीलुर रहमान ने युद्धों, मानवीय संकटों और गहराते जलवायु संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र के प्रति वैश्विक भरोसा फिर से कायम करने का यह दृढ़ संकल्प जताया। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में सभी 193 सदस्य देश शामिल हैं। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख विचार विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधित्व करने वाला निकाय है। यह वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करता है तथा प्रस्तावों को अपनाता है। हालांकि महासभा के अधिकांश प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र मंगलवार को न्यूयॉर्क स्थित UN मुख्यालय में शुरू हुआ। नए महासभा अध्यक्ष बांग्लादेश के खलीलुर रहमान ने अपने कार्यकाल की प्राथमिकताएं पेश करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रति वैश्विक भरोसा फिर से बहाल करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि दुनिया बदल चुकी है और संयुक्त राष्ट्र को भी भविष्य के लिए तैयार होना होगा। इस वर्ष महासभा की थीम है भरोसा बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन, ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सर्वजन के लिए काम करे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि नया सत्र ऐसे समय शुरू हो रहा है जब दुनिया युद्धों, भू राजनैतिक तनाव, असमानता और गहराते जलवायु संकट से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि बहुपक्षीय व्यवस्था में भरोसा फिर से कायम करना हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है।
2: यूएन महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय परिसर में जापानी शांति घंटी बजाने के वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए दुनिया भर में बढ़ती हिंसा, विभाजन और हिंसक टकरावों के बीच विश्व नेताओं से शांति में निवेश बढ़ाने की अपील की। यूएन जापान संघ ने 8 जून 1954 को जापानी शांति घंटी संयुक्त राष्ट्र को भेंट की थी। यह घंटी 60 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा दान किए गए सिक्कों और विभिन्न प्रकार के धातुओं से तैयार की गई थी। इसे पारंपरिक शिंटो मंदिर जैसी लकड़ी की संरचना में लटका कर रखा गया है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दुनिया भर में बढ़ती हिंसा, विभाजन और हिंसक टकरावों के बीच विश्व नेताओं से शांति में निवेश बढ़ाने की अपील की है। न्यूयॉर्क स्थित यूएन मुख्यालय में जापानी शांति की घंटी बजाने के वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शांति अपने आप हासिल नहीं होती, इसके लिए लगातार मेहनत और ठोस कार्रवाई जरूरी है। महासचिव ने कहा कि हिंसा और विभाजन समुदायों को तोड़ रहे हैं, हिंसक टकराव फैला रहे हैं और लोग पीड़ा झेल रहे हैं, मगर समाधान के लिए जरूरी संवाद और एकजुटता कमजोर पड़ रही है। ये अपील 21 सितंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस से पहले आई है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम है शांति में निवेश, सर्वजन के लिए, हर जगह हर दिन। यूएन प्रमुख ने विश्व नेताओं से स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सामाजिक सुरक्षा, मानवाधिकार, संवाद और कूटनीति में निवेश बढ़ाने की अपील की।
2: 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए जघन्य आतंकवादी हमलों में हजारों लोगों की जान चली गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने कहा कि 25 वर्ष पहले हुए ये हमले किसी एक देश पर नहीं बल्कि पूरी मानवता पर हमला था। हमलों की 25वीं बरसी पर उन्होंने हमलों के पीड़ितों, जीवित बचे लोगों और न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में सबसे पहले मदद के लिए पहुंचे राहत कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अनेक देशों ने सुरक्षा उपायों को मजबूत किया और आतंकवाद से निपटने के प्रयास तेज किए। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकवादी हमलों की 25वीं बरसी पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने लगभग 3,000 पीड़ितों को याद किया जो अमेरिका और 90 से अधिक देशों से थे। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और उन सभी लोगों के साथ खड़ा है जिनका जीवन इन हमलों से प्रभावित हुआ। संयुक्त राष्ट्र के उपप्रवक्ता फरहान हक ने महासचिव का संदेश दोहराते हुए कहा,
4: As we pay tribute to the victims,
3: पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए आइए आतंकवाद से मुक्त भविष्य के निर्माण के लिए हम अपने साझा संकल्प को फिर से दोहराएं। संयुक्त राष्ट्र के उपप्रवक्ता फरहान हक के शब्द। महासचिव ने कहा कि 2026 में संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति के 20 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। ये याद दिलाता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई एक साझा जिम्मेदारी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने देशों से आतंकवाद रोधी कदमों को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और मानवीय कानून के अनुरूप रखने की अपील की है।
2: अफगान में 2021 में तालिबान की सत्ता में लौटने के बाद से हालात लगातार बिगड़े हैं। लाखों लोग गरीबी में जी रहे हैं और बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन जारी है। तालिबान शासन का सबसे अधिक असर महिलाओं पर पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने कहा, आज अफगानिस्तान में बहुत से लोगों के हालात बद से बदतर होती जा रही है। उन्होंने शिक्षा, रोजगार, आवाजाही की स्वतंत्रता और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी पर लगे कड़े प्रतिबंधों की निंदा की। आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंशु शर्मा। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

0: आप वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापालियो चौदहवें ने शुक्रवार को अगुस्टिनियन धर्म समाज द्वारा संचालित संत पापालियो चौदहवें अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र के विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए उन्हें प्रेम की सभ्यता का निर्माता होने का संदेश दिया। संत पापा ने विद्यार्थियों को अपने संबोधन में कहा, मैंने शुरू से ही विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी निकायों, सामाजिक संगठनों, कलिसिया से जुड़े समुदायों और नेटवर्क के साथ व्यापक वार्ता के लिए अध्ययन केंद्र की प्रतिबद्धता की सराहना की है, जिसके द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सहयोगपूर्ण संबंध और आदान प्रदान को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा,
1: Il segreto è nel camminare insieme, sempre.
0: कि यह राज इस बात में निहित है कि हम हमेशा साथ मिलकर चलें और उन लोगों से अपने विचारों को साझा करने हेतु अपने द्वार बंद कभी ना करें जो हमसे अलग हैं। संत पापा ने अध्ययन केंद्र के सदस्यों को सच्चे मानवतावाद के मूल्यों से प्रेरणा लेने को प्रोत्साहित किया। ये मूल्य सृष्टिकर्ता के प्रति हमारे खुलेपन में, दुष्टों के संग भ्रातृत्व में संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। उन्होंने कहा, हम युद्ध के द्वारा नहीं बल्कि शांति और न्यायपूर्ण संतुलन के ताने बाने से सभ्यता का निर्माण करते हैं। हमारे समय की चुनौतियों का सामना हम ख्रिस्तीय नहीं करते तो वर्तमान सामाजिक, श्रम, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भों में ख्रिस्तीयता के प्रकटीकरण की नई व्याख्या की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उन्होंने जोर दिया कि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें चाहिए कि हम आम विद्यार्थियों और धर्म सिद्धांत और विशेषज्ञों के अलावे लोगों तथा संस्थान से निरंतर वार्ता करें। संस्थान के लक्ष्य को आशा की एक प्रेरिताई निरूपित करते हुए उन्होंने कहा, हमें सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन हेतु एक ऐसी तैयारी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है जो आम भलाई, समुदाय के प्रति जिम्मेदारी, एकजुटता, न्याय और शांति पर आधारित रिश्ते को स्थापित करने हेतु सेवा के कार्य में समर्पित हो। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि अगुस्टिनियन संस्थान मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, जिसके फलस्वरूप प्रेम व्यक्तिगत, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में नवीनता लाने का एक मूल सिद्धांत बन सकता है। उन्होंने संस्थान के विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए कहा, ईश्वर की नई चीजों में दक्षता हासिल करें, उनमें तेजी और निपुणता हासिल करते हुए सबको चकित करें, लेकिन उन सभी चीजों में भी जिसे वे गुप्त रूप में हमारे लिए लाते हैं। रोम के विकर जनरल ने वैटिकन समाचार से वार्ता करते हुए अनंत शहर के कलिसिया के संबंध में कहा कि रोम में भूखों मरना कठिन है, लेकिन लोग निश्चित ही अकेलेपन से मरते हैं। 19 सितंबर 2025 की आधिकारिक प्रेरितिक बैठक की भांति संत पापालियो चौदहवें के 18 सितंबर 2026 को संत जॉन लातेरान के महागिरजाघर में रोम धर्म प्रांत की आम बैठक के पूर्व वैटिकन समाचार से वार्ता करते हुए रोम के विकर कार्डिनल बाल्दो रेइना ने कहा, हम धर्माध्यक्ष और उनके धर्म प्रांतों के बीच संबंध को मजबूत कर रहे हैं। इस प्रेरितिक बैठक की शुरुआत, जिसमें धर्म प्रांत के 334 पल्लियों के प्रतिभागी शामिल होंगे, एक प्रार्थना से शुरू होगी जिसकी अगुवाई कार्डिनल रेइना करेंगे। इसके उपरांत 3 साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे और तदुपरांत संत पापा लियो का संबोधन होगा। कार्डिनल ने रोम के पल्लियों की मुख्य चुनौतियों के बारे में वैटिकन समाचार से कहा, हमारे सामने टूटते परिवारों की बड़ी चुनौती है, जहां हम परिवारों में आपसी संबंधों में बिखराव, बच्चों की परवरिश में चुनौतियों के अलावे संस्था के रूप में परिवार के हर पहलू को कमजोर पाते हैं। इससे जुड़ी एक अन्य समस्या नशा पान है, जो युवाओं को अपना शिकार बना रही है। उन्होंने कहा, घर की कमी और उससे जुड़ी गरीबी तेजी से गंभीर होती जा रही है। बाजार की ताकतों की वजह से घर की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि यह औसत वेतनधारियों की पहुंच से बाहर हो गया है। कार्डिनल ने कहा, हम मसीह को अपने जीवन के केंद्र बिंदु में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि संत पापा ने हमें विगत साल अपने संबोधन में आह्वान किया था। अतः हम 2033 में होने वाले मुक्ति की जयंती की ओर अपनी निगाहें गड़ाते हैं। उधर परम धर्म पीठ के स्थायी प्रवर्तक स्वरूप न्यूयॉर्क में महाधर्माध्यक्ष क्रिस्टोफ जेड एल कामिस ने अपने प्रथम वक्तव्य में नफरत फैलाने वाली बातों को खत्म करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह सार्वजनिक वार्ता में विष घोलती है, लोगों के बीच विभाजन को बढ़ावा देती और बहुधा हिंसा और उत्पीड़न के लिए एक माहौल तैयार करती है। 17 सितंबर को महाधर्माध्यक्ष एल कामिस ने न्यूयॉर्क में अंतर धार्मिक और अंतर सांस्कृतिक संवाद और सहिष्णुता को बढ़ावा देने पर आयोजित वैश्विक सम्मेलन में अपना पहला वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा, शांति स्थापित करने के लिए सिर्फ शब्द काफी नहीं है। सच्ची सहनशीलता का मतलब उदासीनता या सापेक्षवाद नहीं है। इसका मतलब है हर व्यक्ति की गरिमा और उसके अंतःकरण की स्वतंत्रता को सही रूप में स्वीकार करना। सच्ची सहनशीलता हेतु बातचीत और आपसी समझ स्थापित करने हेतु हमें रूढ़िवादी सोच को त्यागते हुए धैर्य में बने रहने की आवश्यकता है। संत पापा लियो के संदेशों को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा, हमें वार्ता को हर तरह से पूर्वग्रह, नाराजगी, कट्टरता और यहाँ तक कि नफरत से मुक्त करना चाहिए। उन्होंने कहा, आइए हम शब्दों को हिंसा मुक्त करें। उधर बच्चों के लिए मद उपलब्ध कराने वाली यूएन के यूनिसेफ ने यमन में युद्ध की स्थिति को लेकर इस बात की चिंता जताई है कि युद्ध की उग्रता के कारण वहां के बच्चों को बहुत कष्ट झेलना पड़ रहा है। एजेंसी के रिपोर्टों के अनुसार 2 सप्ताहों के अंतराल में 1,04,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा है, जिसमें बच्चों की संख्या 57,000 है। यूनिसेफ ने युद्ध में शामिल सभी दलों से अपील की है कि वे आम लोगों, खासकर बच्चों की रक्षा करें, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान करें और जरूरतमंदों के लिए सुरक्षित और बिना रुकावट मानवीय सहायता पहुंचाने में मदद करें। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।